के सत्रन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो। बेसुमार अथाह अगनत अतुल

अलाप है संग रागनी पांचोथाप है गोण करी अरदेव गंधारी गंधारी सिहुति उचारी धनासरी ए पांचो गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौशक उभारा खौ खड औ पहुरा नद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत।

सरस अहिरी लै बहार जा संग लाई पांचो आर जा सुरमानंद भास्कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सर सुबान ओ आहे बिनोदा गावे हैं सरस बसंत कमोदा।

दी और गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल और रामा कमल कुसम चंपक के नामा गौरा और कानरा कल्याणा अष्टपुत्र।

ततर चक्रवर्ती ततर चक्रभुक्त स्वयं वासुभं सर्वदा सर्वजुगत दुकालं प्रणासि दयालं स्वरूपे सदांग संगे अपनं विभूते देव देखो पद अनुश्रवेद में आपते स्नान दुर्ग गोविंद सिंह जी श्री अकाल पुरख जी सहाय दरबार में तेरो दरबारा सच कर्ण भुषण निरंकारा लक्ष्मी खड़ी तुमरे दरबारा सर्व देवते कर्ण सकारा दोहरा।

नमो नाथ पूरे सदा से सदा नमो नाथ पूरे सदा से सदा नमो नाथ पूरे सदा से सदा नमो नाथ पूरे सदा से सदा नमो नाथ पूरे सदा से सदा नमो नाथ पूरे सदा से सदा नमो नाथ पूरे सदा से सदा नमो नाथ पूरे सदा से सदा नमो नाथ पूरे सदा से सदा नमो नाथ पूरे सदा से सदा नमो नाथ पूरे सदा से सदा नमो नाथ पूरे सदा से सदा नमो नाथ पूरे सदा से सदा नमो नाथ पूरे सदा से सदा नमो नाथ पूरे सदा से सदा नमो नाथ पूरे सदा से सदा नमो नाथ पूरे सदा से सदा नमो नाथ पूरे सदा से सदा नमो नाथ पूरे सदा से सदा नमो नाथ पूरे सदा से सदा नमो नाथ पूरे सदा से सदा

न तात माद जात है, न पाद चिहन वरण है, अदेक सेक वेक है, सदीव विश्व भरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेक विश्व भरण है, जिमी जमान के अभिके सदीव करम भरम है, अद्वेक है, अभेक है, अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्वठौर में विशेख अन्न मानिए, न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण।

अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न शोक है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न सात है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है।

न आद है न व्याद है अगाध रूप लेखिया दोख है अदाग है अच्छे प्रताप पेखिया न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र है न छिद्र

सर्वखंडन सर्वदंडन सर्वकर्माधीन सर्वसमृतन सर्वशास्त्रन सर्ववेद विचार दुष्टहर्ता विश्वहर्ता आदरूपापार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देवा खंड भूम का जले थले मह जपत जाप मंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देवा पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावे शिव रुद्र मुख चार कोट इंद्र उपेंद्र।

हार हार थके सवे नहीं पाइये तह पार। नारद आदक वेद व्यासक मुन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके सब कर कूट कष्ट दुरंत। गाय गाय थके गंधर्व नाच पश्र पार, सोद सोद थके महासुर पायो नहि पार।

त्वा प्रसाद दीरक त्रिभंगी छंद दुर्जन दल दंडन असुर विहंडन दुष्ट निकंदन आदवृते चरासुर मारण पति दो धारण।

डावरूढ़ वंके बरवंग बवंके भुजा फरंके तेज बरंग लंकुड़िया फांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायुध चमके भूखण दमके अथ चमके फुंक फनंग जय जय उसी मै खासुर मर्दन रमक बर्दन दैत जिणंग चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंकण दुजा फरंकण फणि फुंकारण जोत जिते सरधार विपरखण दुष्ट प्रकार खन पुष्ट

जय किल बिग भाजे सुकुबरा जय मध उरंग दुर्जन दल दजे मंथन ऋजे सवै नजे रूह रंग जय जय हुसी मै खासुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर वृते धूमराज विदुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विदुंसन शुद्ध मते

दाता दुरंत दुख दोख रहत जेह नेत नेत सब वेद कहत। कई ऊच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सिवंत कई पलट सूरत सिजदा कराए।

अखंड अखंड प्रचंड पारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार है। पार न पाए सके पद मापद भेद कते भेद उचारे। रोज ही राज बिलोक तराज करो गुरु हान की रोज नटार है। कीट पतंग कुरंग भुजंग भूत भविख भवान बनाए। देव देव खपे अंग मेव न भेव रखियो ब्रह्म शिव भरमाए। वेद पुराण कतेब कुरान हसेब थके कर हाथ।

लोगन के करता हरता जल मैथल में भरता प्रवह है। दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापत ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त गेह अच्छा है। जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दे है। काहे को डोलत है तुम्हरी सुत सुंदर।

जाछप जंग सोदान देवा भेव तुम सब ही कर ध्याव भूम आकाश पताल रसातल जाछप जंग सब शरण्या वह पाए सके ने पार प्रभाहू को ने तही ने तह वेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हु मिल गायो वेद गतेव न भेद लखे सब हार परे हर हाथ न आयो पाय सके नहीं पार उमावत सिद्ध सनात सनातन ध्यायो ध्यान धरो तय को मन मै जय को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेव कुरान अभेद निर्पान सब पजहारे भेद न पाय सके न भेद को खेदत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग त्यारे याद अनाद अगाध बेगद वैख जप्यो तिन्ही कुल तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे देश फिर कर भेष बोधन के सरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बहु न्यास करे मुख कारे दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे त्व प्रसाद कबित अत्र के जलैया छित छत्र के धरैया छत्र धार्य के छलैया महा सतरण के साल है दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है युद्ध के जतैया।

काल हूँ के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को भूगत के वृद्धता की बासी है। जो गहूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है निप के पूरण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सार है। जान को बचैया है ईमान।

विश्व को भरण है कि आपदा को हरण है कि सुख को करण है कि तेज को प्रकाश है पाई न बार बार वार हूँ पार जगो की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय का वह

0: राष्ट्रपति
1: जय मात पिता सुत मीत न पाई
0: मनुआ नाम तेरा संसाय तै केवल नाम सन तेरा चले
1: मुश्कुर होवे अत पारी
0: हर को नाम के माए उधारे
1: चरण करत नहीं तरे
0: को नाम को पाप पर हरे
1: मुख नाम जपो मन मेरे
0: नान पावो सुगने रे
1: सगल शिष को राजा दुखिया
0: हर का नाम जपा सोए सुखिया
1: राग क्रोरी बंद न परे
0: हर का नाम जपा ने सरे
1: अनिक माय रंग तिख न बुझावे
0: हर का नाम जपा तागावे
1: जे मारगे जात केला
0: तहा नाम संगो सुएला
1: ऐसा नाम मन सलाती आइए
0: नान गर्म प्राम गत पाइए
1: जत नहीं कोड लखबा
0: नाम जपत है पार पराए
1: अनिक बिगंज है।

0: नाम की महिमा संत रिज बसे संत का संग बड़ भागी पाइए
1: सेवा नाम ते आइए
0: नाम तुल कछे

0: साज सवार सिगारिया
1: बार बार मैं जने वारिया
0: बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध
1: बाजो बार भोजन सुसु
0: बिरद व्या ऊपर छाक सैन
1: मुख प्याओ बैठ को
0: दे ए निर्गुण गुण कछु न बूझे
1: पकछो तो नाने सिजे
0: जय प्रसाद तार ऊपर सुख बसे
1: सत प्रात नींद बनता संग
0: जय प्रसाद पीवे शीतल जला
1: सुखदाई पवन पाव कामला
0: जय प्रसाद भोगे सब रसा
1: सगल सामग्री संसाद बसा
0: दीने हस्त पाव कर नेत्र रसना
1: किसे त्याग संग रचना
0: ऐसे दो गुण अंध

0: जय प्रसाद छत्ती अमृत खाए
1: सागर को रख मन माए
0: जय प्रसाद सुगंध तन लावे
1: तिसको सिमरत नाम गात पावे
0: जय प्रसाद बसे सुख मंदिर
1: तिसे ध्याय सदा मन अंदर
0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
1: आठ पैर सिमरो तिस रत्ना।

0: जय प्रसाद स्वस्ति सवारी
1: मध्य प्रभु को कबूला
0: जय प्रसाद बाग मिलक तना
1: राग प्रभु अपने मना
0: जिन तेरी मन बनत बनाई
1: उठा बैठा साथ गए।

0: देखो
1: साथ के संग मिटे अभिमान
0: साथ के संग प्रगटे सुज्ञान
1: साथ के संग बुझे प्रभ नेरा
0: साथ संग सबोध निवेरा
1: साथ के संग
0: साथ
1: की महिमा भरने कौन परानी
0: साथ
1: के संग गोचर मिले
0: साथ के संग सदा पर खुले
1: साथ के संग आवे बस पंचा
0: साथ संग आवे साथ पंचा
1: साथ संग होए सबकी रे
0: साथ के संग मनोहर में
1: साथ के संग न कछु उधावे
0: साथ संग चितमन पावे
1: साथ के संग माया ते पिन
0: साथ संग नानक प्राप्त सुपा
1: साथ संग दुश्मन

0: साथ के संग ना कभू दावे,
1: साथ के संग सदा सुपावे,
0: साथ संग बस गोचर रहे,
1: साथ हो गए संग अजस है,
0: साथ के संग बसे थान ऊंचे,
1: साथ हो गए संग महल पहुंचे,
0: साथ के संग जुड़े सब तरम,
1: साथ के संग केवल पार ब्रह्म,
0: साथ के संग
1: पाए नाम निदान,
0: नानक साधु के कुर्बान, साथ के संग सब

0: वैष्णो सोजी सुपर सो प्रसन्न
1: बिसन के माया ते होए
0: करम कर तो वे न करम
1: तिस पासो काल माखन
0: हम फर की छानी बाचे
1: केवल भगत के तन सराचे
0: मंत्र नंतर सिमरन गोपाल
1: साधो परम कृपा
0: प्रभु नाम जपावे
1: नानक को वैष्णो ब्रह्म पावे।

0: सब पावे जन को
1: कर कृपा अंतर उधारे
0: प्रेम मुगल पाथर को
1: सर्वे का ओख दना
0: कल्याण रो मंगल गुण
1: काहू जुग किते न पाइए तर
0: नान तिस प्रिय जिस के क्या दूर
1: के मन पार ब्रह्म का निवास
0: तिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नदरी आया
0: दात संतर पाए तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दादर के परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: तिस दास को सत सो जी

0: कई कोट अपेगा तमने
1: कई कोट पर धर्म को हिरे
0: कई कोट पर दुख ना करे
1: कई कोट माया श्रम माए
0: कई कोट पर देश प्रमाए
1: जित लावो तित लगना
0: जाने करते की जाने करता रचना
1: कई कोट सी जति जोगी
0: कई कोट राजे सब
1: होगी कई कोट पंखी सरब उपाए
0: कई कोट पाथर बिलगने जाए
1: कई कोट पौन पानी बैसंतर
0: कई कोट देश तू मंडल
1: कई कोट ससियर सूर नखत्र
0: कई कोट देव दानंद से छतर
1: अपने सूतारे
0: नाने जैसे पावे तैसे न सारे
1: कई कोट राजस्थान।

0: को खोजनते
1: आत्मय पार ब्रह्मलाते
0: दर्शन प्रप्यास
1: तिनको मिलियो प्रभु बिना
0: यही कोट मांगे सत्संग
1: पाप ब्रह्म ते लागा रंग
0: को होय अब सो प्रसन्न।

0: भूम का जो करे गुमान
1: सोमोरा खंदा
0: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
1: नानक या मुक्ता गैस पावे
0: बनता हुए कर गरबावे
2: समान का संग ना जाए
0: वो लश्कर मानो।

0: के दुखन सुख सब जाए
1: सन के दुखन नरक में पाए
0: सन के दुखन मत होए मनी
1: सन के दुखन सब आते
0: सन के हते को रखे न कोई
1: सन के दुखन थान
0: सन कृपाल कृपा।

0: सात की तूर करो स्नान,
1: साधो पाए कुर्बान,
0: सास सेवा बड़ भागी पाइये,
1: सात संघा के तन गाये,
0: अनेक विघ्न ते साधु राखे,
1: हर गुण गाये अमृत।

अमृत छाड़ बिखै बिखाई माया मोह भ्रम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत

पौड़ी सेव की संतोखी जिनी सच सच त्याया ओनी मंद पैर न रखियो कर सुकृत रमक माया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शिशी अगला नित